सुबह के 5:58 मिनट 35 सेकंड होने वाले हैं। आरंभ होती है

0: आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। श्रोताओं सुबह के शुरू बजने वाले हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारती के क्षेत्रीय सेवा से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक

बोस्टन ने सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है।

स्थलों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थी। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने 3 गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत

kita dipakarkan bandan baik. विद्वानों का कथन है, मुश्किलें केवल उन्हीं के लिए आती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कभी हार नहीं।

आज और प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस आज का भाग 189। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार है गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। भूले विश्व गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम राही प्यार की। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक है मिलिंद सबने। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुनिए इसका भाग 28। सपना प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। चित्रलोक कार्यक्रम 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम संगीत होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए सितारा में हेलो फरमाइश। 11 बजे रामचरण कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी

37 मिनट से सुनिए सदा बहार नगमे 3 बजे हेलो सहेली प्रस्तुत करता अनुप्रीता 4 बजे सुनिए सितारा।

एक सरल रेखा रेखा लेखिका श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी संपादन सहायक काजल भद्रगे प्रस्तुतकर्ता अजुबैर खान पाँच बजकर 30 मिनट पर सुनिए कराने में पुराने 6:35 पर संध्या रंजन 7 बजे सुनिए जयमाला 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार लेखन है वीरेंद्र कश्यप का निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर इनकी प्रस्तुति आठ बजकर पंद्रह मिनट पर रात्रि चित्र लोग 9 बजे आपके लिए और 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत लेखक एवं स्वर राजुल अशोक का प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी 10:30 पर ढलती जायरा ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का रूपांतरण।

प्रबल बिलक कहो मुनि नाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हा। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बताते हुए ये वचन कहे थे, राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़े भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यक्त है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना

yourself out.

0: विविध भारती के स्टूडियो में श्री अनूप जलोटा जी मौजूद हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कोश फूले कुमुदिनी जी सकुच रही भृंग लता झूले। श्रोताओं, कृष्ण भक्ति का संसार बड़ा विविध रंगी है। इसमें कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप और मधुर रूप की अद्भुत कथा लिखी गई है। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला में भक्ति के विविध रूपों और आयामों पर चर्चा हम कर रहे हैं अनूप जलोटा जी के साथ। इस कड़ी में आज भक्ति भाव की कौन सी कथा अनूप जी बिखेरेंगे, हम उन्हीं से पूछते हैं। अनूप जी बताइए।
1: आज हम कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमें अधिकार देते हैं, थोड़ी लिबर्टी दे देते हैं कि हम उनको चोर भी कह सकते हैं, हम उन्हें माखन चोर कहते हैं,

की राजलीला में शामिल होते हैं। भगवान ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इतनी हमें इजाजत देते हैं कि हम उनके साथ कर सकें। इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, तो जो वानर सेना थी वो उनके पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो गया, उन्होंने अच्छा धोखा हो गया कि हम तो आपके भक्त थे, हम आपके साथ खेलने आए थे, आनंद करने आए थे और आपने हमको रावण युद्ध में लगा दिया। उसके बाद अब आप राजा बन गए, अब तो हम बिल्कुल आपके साथ खेल नहीं सकते, हम तो बड़ा दूर रहते हैं आपसे। तो भगवान राम ने कहा कि बात सही है, अब मैं राजा बन गया हूँ, तुम लोगों के साथ मैं खेल नहीं सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊँगा और तुम लोगों को ग्वाल बाल बना दूंगा और हम सब खेलेंगे। तो अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भय राम जी के बानर किशन जी के ग्वाले। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो हमें आनंद देते हैं,

0: बातें बदलिए कि रंग जरूरत है डूब गए थे खो से गए थे। अनूप से हमें बताइए कि इस भजन में किस राग की चर्चा थी?
1: कोई प्योर राग इस्तेमाल नहीं थे
0: और हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे भजन आपने गाए हैं, उन भजनों की रचना प्रक्रिया बताते हुए कुछ झलक प्रस्तुत करें।
1: भैया मोरी मैं नहीं मातम खाए, इस भजन को पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले गाया और कमाल का गाया। उसके बाद उसी श्रृंखला में उसी भजन को कुछ उसी स्टाइल में मेरे पिताजी ने उतारा और उसको एक सरलता प्रदान करी। उसके बाद कई लोगों ने उस भजन को गाया अलग अलग धुनों में, लेकिन हमने मैंने और पिताजी ने उसी धुन को साथ रखा जो पंडित ओमकारनाथ

0: भी बड़ी चालाकी थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी। सोचा था कि जब नहीं आएंगे ये मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई, समझ गए कि गोपी अपने को बहुत चालाक समझती। तो घंटी को आदेश दिया, बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है, बिल्कुल चुप रहना। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, और जैसे ही जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी।
1: क्या बात है,
0: कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थे और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू किया। घंटी बोली हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते। बस आधे गोपी पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास और यशोदा पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया क्या, और कन्हैया के मुख से

चुराया है, तुम्हारा नाम पड़ गया माखन चोर। अपने घर में तो सब कुछ है, दूध दही मिठाई मेरे, वो सब तो तुमने चुराते। तो ये माखन से इतना

4002462662 तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

to tighten my demo.

को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू और सदस्य दीप पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे गिरोह से जुड़े धन शोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु विश्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेन देन

0: शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
1: मेले में मोगली, पंचाली, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य स्कूल तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग हरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रत्नाकशी, पत्थर उछाला और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं हनी गुलशन रहा हूँ।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीता पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर से पीएम दिवाली मिलते हैं। कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 7 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की टी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में

0: चढ़ा विश्वास को गिरफ्तार किया और मुसुर में अपर्णा दहिया ने मकाओ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम जय घोष मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक सुनिए श्रृंखला की

स्वदेशी जागरण और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जनजागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रखकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गाँव गाँव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन

में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थी उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी की चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए

जब वे व्यक्ति हो या वो साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। सांप की माया को छोड़ संघ के आभूषण पहनकर स्वभाव के

0: पड़ता। मात्र भंडार अर्थात माइंड वस्त्र इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
1: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में

अच्छे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त

0: लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखती थी। हिंदू और मुस्लिम में कर उनके बीच बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिम, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
1: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्य

0: सुंदरता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
1: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
0: बंग दर्शन पत्रिका के संपादक भारत वर्ष की विभिन्न जातियाँ जब तक एक मत, एक परामर्श और एक उद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारत वर्ष की उन्नति नहीं होगी। बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहाँ लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओ।

इस लघु रूप श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलन सभी, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: आश्रम 10 साल जयपुर में एंटर किया तो एक लड़कपन का दौर था हमारा, लेकिन भारतीय परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था। टीम का जॉब भी इसलिए मुझे उसके चरण से इन चीज़ों को हमार दे और पैसा करने का अवसर दिया। मेरे पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है पर इंडिया में जाना थी और जब ये भी युद्ध के साथ शुरू हो गए कि किसी चाय के साथ नहीं हुआ।
1: आपके मान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 30 मई सुबह 10 बजे फिर
0: जाओ।

लिए है, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए और प्रोग्राम जो शुरू होगा तो आपको हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं,

अधिक समाचारों के साथ मैं पूनम जयचेतना मुख्य समाचार। राज्य में ट्रेजरी निकासी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय

शादी नब्बे वर्ष पूरी होने पर कल रांची में शास्त्रीय संगीत भी बिखेरेंगे सुरों का जादू। और झारखंड टी ट्वेंटी क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का अनावरण तर्ज पर 20 जून से शुरू होगा। राज्य में वेतन मद में हुई 40 करोड़ रुपए की फर्जी ट्रेजरी निकासी मामले में प्रवर्तन निदेशालय से संदिग्ध अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद राज्य के 6 जिलों में ये गड़बड़ी उजागर हुई है।

ikke du håret, så man spenner deg.

0: कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया तो एक उलटपन का दौर था हमारा।
1: एक बहुत ही परिवार के सदस्य
0: मुझे उससे चले थे इन चीज़ों को हमार दे और सरकार करने का अवसर दिया। मेरे पास सारी कितनी उड़ान बाकी परिंदे उड़ान बाकी और जब दीदी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए किसी शायर के साथ नहीं हुआ।

दिल्ली गाना। रेखा भारद्वाज की बोल और माफी देगा, रेखा भारद्वाज की आवाज में बोल है गुलजार की और विशाल भारद्वाज का संगीत।

के बारे में आप और जान सकते हैं आज के संचार कार्यक्रम में, जो कि शेष होगा आपके लिए 9:30 पर, और इसका पुनः प्रसारण होगा आज रात 9:30 पर। कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं, पर सबसे पहले

सोच सब करते हैं, लेकिन जो खुशियाँ आज के बाद तक बरकरार रखे वही क्या वादे सच्चे हैं। सच्चे प्रेम की कथा सुनते सुनिए ये गाना मनन भरद्वाज और ऋषि कुमार की आवाजों में। मनन भरद्वाज के बोल और इनका संगीत।

आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आज के बाद के वादों को भी संभाल के रखे, तो आपका दिल तो भर ही जाएगा। बाहर से आए एक लव स्टोरी, श्रेया घोषाल, सोना महापात्रा की आवाजों में ये गाय

0: पर जो है हमारे सुनने वालों के लिए
1: आपकी बात कार्यक्रम
0: और प्रोग्राम की बात करिए तो आपको हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट

सुबह को इजाजत। लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर। तो सुनाना चाहिए।

सबसे छोटी सबसे दुलारी माँ के दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था, जो नन्ही माधवी संगीत सुनते ही थमकने लगी। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियाँ उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

विकसित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। उस साल था 1984 जब राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल

दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आई। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उसका लक्षण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुई, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार

हर तरफी बातचीती थी, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गई। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेश की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप जल्दी होती गई।

का दौर शुरू हुआ। 1990 में आईटेन पिछली तंबिया के बाद संदेल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

मात्र जैसी उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसमें उसकी पत्नी है। खानेदार खंडे के साथ जैसी फिल्मों ने खूब साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव और खूबसूरती के अलावा

जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: उसकी जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को या फिल्म अंजाम की कुटाई हुई शिवानी चोपड़ा को या फिर मृत्युदंड की केतकी सिंह को जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, चलिए देखिए, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है,
1: हमको भी कुछ बात करना है।

रिश्ते में एक बार फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म थी हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

लेकर आया कि भावनात्मक उथल पुथल के बीच से तीन किरदारों की फिल्म दो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे।

की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र किया जाता है, जिसमें प्रेम निखारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

उम्र हर वर्ग के दर्शकों की सहमत रही है। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गदगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म गदगा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें

दे। माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा।

माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गई। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आता नकली।

पाती। और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म दिल इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आई।

एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में स्कूल पर थे अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आए। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना

मेरी दिक्कत में जज के रूप में रियलिटी डांस शो किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट में भी व्यस्त रहती है। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित

कार्यक्रम आप सुन रहे था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजन का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से।

0: की बजाय
1: सोड़ उदयपुर के पास से वहाँ शूटिंग कर रहे थे तो ऊंची सी

जाकर जब कर जाए। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, मैं भाग रही हूँ और जब भी कर रही हूँ गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी चाहिए, ये कैसे हो सकता है। मैं बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने,

अनुरोध करता हूँ के माध्यम से अपनी जानकारी आपके बारे में भविष्य में स्कूल अस्पताल सरकारी आप अपने मोबाइल से SC.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरे यह पोर्टल जाकर 15 मई 2026 अक्टूबर में तो खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारी भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बाकी बात

अपने मोबाइल से खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जानकारी जिम्मेवारी निभाई। अब आपकी बारी है।

इंसान की प्रकार की बात कर रहे हैं एफएम के

शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं।

तो आज तारीख है पंद्रह मई, वैसे तो हर दिन कैलेंडर पर पता होता है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। जब हम परिवार शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मम्मी की डांट, पापा की लाठी भाई बहन की छोटी छोटी बातों का तकरार या दादी नानी की वो पुरानी कहानी।

mi dio delight, porque si te llevas a vos y tu arte, y si estamos a la manera, bien en esa marca, tú son un bache de mi calidad y sin clase, sin finito que hombre me es bien de su bache aquí, ताकि हम समझ सकें कि समाज की सबसे मजबूत इकाई हमारा परिवार है। तो दोस्तों आज के दिन आपको कुछ खास करना है अपने परिवार के लिए, और घर जाकर टीवी या मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए और अपनी माँ के हाथ की चाय पीजिए, पापा के साथ बैठ कर उनके पसंद की बातें कीजिए और अपने बच्चों के साथ भी थोड़ी सी समय जगह जरूर होना चाहिए। यकीन मानिए जो सुकून वहाँ मिलेगा ना वो और कहीं मिलेगा।

तो आज 15 मई है और आज का दिन उस महान सपूत को नमन करने का है जिसकी जगहों में ब्रिटिशों की हुकूमत के लिए हिला दी थी। जी हाँ, आज देश के महान क्रांतिकारी और महाभारती के सबसे बड़े सुखदेव की जयंती है। जब भी हम देश की आजादी के दीवानों की बात करते हैं तो दीवान पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु नाम जरूर आता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं दोस्तों, ये वो त्रिमूर्ति है जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए शांति के संदेश को चुना। क्रांतिकारी आंदोलन के असली मास्टर माइंड और रणनीतिकार भी थे। जब 1907 को पंजाब के लुधियाना निगम ने सुखदेव बचपन से ही देश को बुलाने को उद्योग कर उठते थे और जब वे बड़े हुए और लाहौर नेशनल कॉलेज पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। दोनों के विचार में भी बल्कि दोनों के दिल में आजादी के लिए काम थी। सुखदेव के पास एक संगठनात्मक कौशल था। उन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एससीआरए को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जानते थे कि बिना युवाओं को जोड़े क्रांति अधूरी है।

0: मैं सफाई की मुख्य अंतर्गत अब आप सोगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा भी इमरजेंसी के आधार पर भविष्य में स्कूल अस्पताल सड़कों और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल आपके लिए 15 मिनट और 26 अक्टूबर हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहर भविष्य और सशक्त योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बात।
1: हर की बात, आकाश की बात, हर दिल की बात।

परीक्षा के लिए हेल्प

सुकन्या ने एक ऐसे महानायक का नाम दर्ज है जिसने भारतीय सेना को इसकी असली पहचान दिलाई। आज देश के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को याद करने के लिए आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस योद्धा की जिनका अनुशासन राष्ट्र प्रेम और नेतृत्व आज भी हमारी सेना की जगह में रहता है। 26 जनवरी 1900 को कर्नाटक के कुर्ग में जन्मे कोदान डेरा मजप्पा करियप्पा यानी हमारे कीपर जी हैं, उन्हें प्यार से लोग कीपर भी कहा करते थे। उन्होंने एक ऐसे दौर में भारतीय सेना की कमान संभाली जब देश नया नया आजाद हुआ था। 15 जनवरी 1949 को जब उन्होंने ब्रिटिश जनरल सर रॉय ब्रिजेस से भारतीय सेना की कमान ली तो वो सिर्फ फर्क हस्तांतरण नहीं था बल्कि वो भारत के स्वाभिमान का उदय था। यही वजह है कि हर साल 15 जनवरी को हम सेना दिवस मनाते हैं। और धर्म की दीवार सेना का धर्म सिर्फ राष्ट्रधर्म है। उन्होंने सेना के भीतर से जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर सबको सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनाया।

के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो दूसरे भारतीय युद्ध बंदियों के साथ हो रहा है, या तो सबको छोड़ो या किसी को नहीं। ऐसा था उनका विशाल चरित्र। उनके क्षेत्रीय सेवाओं के लिए 1956 में उन्हें विशिष्ट सर्वोच्च सैन्य सम्मान फील्ड मार्शल की मानद उपाधि से नवाजा गया। वे इस पद को पाने वाले दूसरे भारतीय सैन्य अधिकारी थे। 15 मई 1993 को बेंगलुरु में 93 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। भले ही आज फील्ड मार्शल करियप्पा हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और निष्पक्षता में वे हमेशा के बीच रहेंगे। हम सब की ओर से इस महान देशभक्त को शत शत

तो बॉलीवुड की बात करें तो आज के दिन बेहद खास है, जो किया है ग्रीन और बॉलीवुड की धक धक धर का जन्मदिन, जिन्होंने अपनी एक मुस्कान से करोड़ों दिलों की धड़कनों को थाम लिया है। आज जन्मदिन है सबकी बड़ी खूबसूरत घटना के बाद माइकल डिस्ट्रिक्ट माइकल डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बॉलीवुड का एक ऐसा खूबसूरत दौर है जिसकी समझ आज भी टिकी नहीं पड़ी। 80 और 90 के दशक में उनकी काम शुरू थी तो सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि उन्होंने कमर्शियल के साथ साथ आज फिल्मों में भी काम किया। विश्वजंग और लज्जा जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक ग्लैमरस एक्टर नहीं बल्कि बेहद संजीदा और बेहतरीन अदाकारा भी है। शादी के बाद उन्होंने कुछ सालों के लिए छुट्टी लिया लेकिन फिर उन्होंने वापसी की और आज भी वो फिल्मों में और रियलिटी शोज के जरिए एक्टिव

उंगलियों की सूक्ष्म को भी साफ साफ पैक कर लेते हैं। जब हमने 5 मीटर से कम दूरी से ली गई है तो फिंगरप्रिंट की जानकारी को 100% सही तरीके से यूज करते हैं। फोटो थोड़ी दूर यानी 3 मीटर से ली गई है भी AI पावर्ड सॉफ्टवेयर उंगली फोटो को साफ करके फिंगरप्रिंट का रेट तैयार कर सकते हैं और सोली फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन को अनलॉक करने, फिंगरप्रिंट लॉक करने वाले दरवाजों को खोलने या कर सकते हैं। तो फिर आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि किसी पोस्ट वाली बस्ती पोस्ट करने से पहले कोशिश करके उंगलियों के पोरों को चिन्ह कर दें। फोन बैंकिंग के लिए पासवर्ड या पिन शैली जैसी चीजों का इस्तेमाल करें। फोटो लेते समय कैमरा उंगलियों से कम 3 से 4 मीटर की दूरी पर रखें और हाँ, कुछ सावधानियां बरतनी है आपको, जैसे उंगलियों के पोरों को कैमरे की ओर ना रखें, बहुत करीब से हाई डेफिनेशन सेल्फी ना लें, उंगली के अंदरूनी हिस्से को एक्सपोज ना करें और बिना सोचे समझे तस्वीर शेयर बिल्कुल

अगली बार कैमरे के सामने अपनी उंगलियां दिखाने

सुंदर समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे राष्ट्रीय प्रसारण से आकाशवाणी जमशेदपुर से अगले प्रसारण के लिए आई तो अपने विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से और परिवार का आपसी संगठन आपसी सेम ही कर पाया गया।

गीत आपने सुना कि देश भोज थे मोहम्मद अजीज उदित नारायण और साथियों की आवाजें आनंद बख्श के बोल लक्ष्मीकांत प्यारी लाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

सुन रहे थे मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सचिन की फोन इन्फॉर्मेशन पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी मेर आज संज्ञा सुनेगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और

सारा सुनकर और साथियों की आवाज मजे सुल्तान पुरी के बोल बब्बी लाहिड़ी का संगीत कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही में पारिवारिक एकजुटता

की भरपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुना रहे ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो है ही, साथ ही पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं। साधना सरगम और साथियों की आवाज है महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत, दोनों सजा के रखना सुनिए।

रोजाना दोपहर 2:30 मिनट से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर और रोज रात शायद गीत होता है 10 बजे। अगर आप प्रतिदिन शायद गीत सुनने से रह जाए विविध भारती पर इन दिनों कार्यक्रम जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमें शामिल किए हैं।

से मनाडे और मोहम्मद रफी की आवाजों में अक्सर चौधरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छायागीत कार्यक्रम, और अगर आप इसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छायागीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते

मूर्ति और हरिहरन के साथ साथ दर्जावाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हैं।

Canadá.

Exactly.

योद्धाओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर और मजा तो इसी बात में है कि आपके गाने से लिस्ट और हमारे गानों से लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारी पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक में भी जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/mumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध ढंग की राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध ढंग की राष्ट्रीय सेवा देव नागरी हिंदी में लिखा हुआ है, उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी इस पार्टी का 100K लिखा होगा, यानी कि 1,00,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इस पर भी आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं सीखकर आपके सामने कर दूँ। गर्मी जहाँ भीषण

इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया कि आज भाभी बचपन में मिलने वाली घंटों की छुट्टी की है और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिखे भी हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही ये बताएं कि बचपन आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने दो तीन खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियाँ आपके लिए फिल्में ज्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं, और क्या गर्मियों में आप कितने का प्लान बनाते थे, या जब बच्ची गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा धरा है, क्या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज्यादा पड़ती थी या बुलाया ज्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं

बुद्ध दृष्टि से जीरो एरर होती है हमारे दायित्व है। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहेंगे।

गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए, इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहाँ कहाँ तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं है, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वही हमारे साथी कह रहे कि आज भी बचपन में जीता हूँ, एरोप्लेन की आवाज आती है तो ऊपर देखता हूँ, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूँ, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूँ। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करती थी। और हमारे साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर छुपाई, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था, ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से जलने वाले पंखे याद करें हमारे साथी जो उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के हाथों साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ इसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुल कर देते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत है वो सुनवा दिए जाए। भाई दादी वाला गीत तो हमने सुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास है। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए, तो आप हमें बताइए। तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं,

रहे थे और उनका नाम भी हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कह रहे कि आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इसमें रोमांच होता है, गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गाँव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लच्छी खेलना, चोर सिपाही खेल

0: हैं कि हम झरने के पास समुन्द्र के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहाँ सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहाँ जाएं और गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमा लेते हैं जहाँ के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे कॉल साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो चिड़िया पकड़नी हो चिड़िया को पकड़ कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी और बहुत सारे खेल थे कागज पर चोर पुलिस खेलना कैरम बोर्ड खेलना कच्चे गिट्टे बहुत चलते थे। हार जाने पर सच्चे उनके खेल भी देते थे तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे कॉल साथी कह रहे कि बचपन में हम सबका चलाते थे और रेडियो जब बच्चा था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं और आमिर आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे कॉल साथी बता रहे की गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ मिट्टी के घड़े का पानी ढेर सारे रसीले आम रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना तारों को गिनते हुए सो जाने सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया गिल्ली डंडा छिपन छिपाई पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था और हम दोस्त के घर का दरवाजा हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम पानी की तरह है और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे कॉल साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था ऐसे तो गार्जियन को चेल खरीदेंगे पर ट्रेन में ही डिब्बे में दूध का मलाई बर्फ लेमन फ्रूट ककड़ी मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं तो नानी की नाव चलाए या नानी की मोरनी की बात होगी ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख लिया लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये भी बताइए किस कम का है
1: नाव चली

रविवार के बोल वचन वेबसाइट कार्ड संगीत कार्यक्रम सुनीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारी कुछ साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रहती थी। गर्मी की छुट्टी में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, बहने के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते, एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी। उनका ऑफिस भी खाली रहता था, जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वही इकट्ठा होते थे, तो खूब धमाक चौकड़ी मचती थी। लड़ते झड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं है, अभी लड़ाई होती है और अभी मर जाते हैं और अपने मन में कोई बातें कैसे नहीं पाते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए, तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वो दोनों ही गीत सुने चाहिए। आशीर्वाद संघ का गीत उसने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया और हमारे साथी कह रहे थे बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे, उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज, तक की आवाज निकालना आदि। वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त मिला करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से किसी घर से बाहर निकलने की मना

का प्लान बना रहे थे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी में बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो है उनसे आधारित गीत भी हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चली है तो भाभी जी को ट्रेन से भिजवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं, भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा। तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारी साथी कह रही है कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की माँ से मनोहर बातें याद करने से सीखना हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियाँ देखना, नीम के पेड़ पर बने झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियाँ कैसे गुजर जाया करती थी पता भी नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियाँ हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथी ने बताया कि जो दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद की मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी है और हमारे साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काशी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे कल साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली लोहे का पहिए को शरीर से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक सुपर स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया और उसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वही बात का कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजे से प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कह रहे हैं कि नानी की डांट से नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना और वो टॉप के लिए उनका कपड़े लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार भी ज्यादा पाया। हाँ कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लगते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। तो उन्होंने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद करें। चलिए सुनाते हैं आपको ये किंग से जुड़ा गीत, हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस संग से हमने लिया।

सरल शास्त्रों के आवाज से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, और चुपचाप देख लिया गया। वही जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। इस तरह का खेल में कौन किया करता था? क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था? खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करते थे खेल में? हमें बताइए। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोज कर रखती थी। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झुला है, पंखे का प्रेम आता था उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में निहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम पर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसी के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे साथी ने सत्य घटना बताई कि वर्षों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के छोटे से रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई दो तीन पाँच दस पैसे देते थे, जिससे उस रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी

एक पकड़ में कड़ाई या गिली डंडा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वही हमारे और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, किसी नानी के घर जाते थे।

नंबर नहीं हो

रहे। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तब भी बना हुआ है। और हमारे कौर साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे साथी कह रहे कि गर्मी की छुट्टियाँ बचपन की सबसे अन्य नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है।

भी मधुर स्मृति आज भी मन को ठंडी सांझ का सुकून देती है। वही हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं। वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वही हमारे साथी कहेंगे कि जब छोटे थे तो वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लगने लाने वाले सेल्स मैन को देख कर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए केतले और अचार में ही आती थी। आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस टाइम का ये गीत है।

फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। ये हमारे और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहाँ भी हम जाते थे। और मन में कुछ चीज की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं।

आप में सुना है, जैसा इसमें कहा गया है, समय जब होता है तो जाना भी होता है, तिथियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुविधा सफर जारी रहता है 24 घंटे।

कार्यक्रम इस वर्ष की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक आज सुनिए श्रृंखला की

महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जन जागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रखकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद राम। मुकुंददास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में बिहार के बीच बनी चौपाल पर नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन

व्यक्ति बन गई। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थी उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए

सही इस्तेमाल न करो। तुम सब प्रिय लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। काश की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर स्वभाव के धारण करो।

0: इसी का प्रचार अपनी परम पर था। मातृभंडार अर्थात मायेर वस्त्र इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
1: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता

कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं, फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहाँ पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हुए वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त है।

0: लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई थी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिम, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
1: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
0: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
1: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।

घोष। इस लघु को श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर।

empire in this case and one day, Marathakon Sampanta Vyaparo Parashwamsura. This Vedic Mantri ki Baita goes to Dindu Jari, Vedic Mantri Dr. Jaisankar ne, Vedic aur Prabhavi Bahupatwa ke lakshya ko aage badhane ke liye, Bharat ki Pratibhadhata ki pushti ki. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता व पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के

लोग और विपक्ष के व्यापार पर प्रमुखों से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की

चुनौती पूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र

देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे और यहाँ के सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार दे।

प्रदेश मंत्री अब्बास अराजी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने

ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से

0: लोगों का रिक्शा चली अपनी पसंद का शहर सुनने का अवसर मिलेगा।
1: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ न आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहिए उन लोग खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रूपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सिविल जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

भारत में पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री सुरेंद्र रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि

Thank you.

Virgin Oro, vean, o sea, es el feliz año. उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणाली

पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। विश्व देश संघों की बैठक 20 दिन की जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद

कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमी कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमी का गीत।

सेक्टर 5 शंकर गीता प्रश्ना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी मेयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनेगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार।

Yeah, they would have had to take a test.

देख रहे हैं बच्ची जो बोल रहे हैं उनके पिताजी को इन लोग मार दिया, ऑक्सीजन के अभाव में कैसे चलेगा अस्पताल और क्या होगा। पौधे से बात किए, नए नए आए हैं और उनको देख के लगता है कार्रवाई करेंगे। हम भी बोले सख्त कार्रवाई करें, और ये सरकार से

Sim, eu

और

0: अराउंड ये सब खाएं तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
1: क्या बात है, मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
0: जी,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसी को चटपटा खाना पसंद होता है पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं जिसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं पूछ बताऊंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
0: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे

0: के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी होती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम से निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, वो सब भी साथ में रहते थे। तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।

0: जबन पुराई हुई हो मध्य प्रदेश में।
1: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं।
0: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई है।
1: मैंने मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में ना।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अच्छा वर्षा जी बताइए, आपके बारे में बताइए।
0: सोनाली जी मेरे बारे में बस क्या बताऊँ, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
1: आज परिवार दिवस है तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है।
0: ओ सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने, और परिवार की अहमियत मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
1: ससुराल हो या मायका हो, है ना।
0: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है। ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
1: और परिवार का अगर हमारे साथ मिलता है तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई तो है ना।
0: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना भी कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है।
0: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती हैं।
1: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिला है वो बहुत आगे बढ़ेगी।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं।
0: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं।

0: दिमाग प्रगति दिमाग जी कहाँ से फोन लगाया आपने? नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी,
0: हाउसवाइफ हूँ।
1: हाँ
0: मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूँगी, है ना, क्योंकि

0: प्रगति जी, आपके जीवन में परिवार की क्या महत्ता है? यानी आपके परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ खूबसूरती से कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: हाँ मैं काम के और हमेशा विविध भारती की लगाई करें।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। चलिए

0: जी कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: शास्त्री जी सर आपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, लगन संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: शास्त्री जी आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी
1: के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सच में यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी बहुत।
0: और विविध भारती सुनती है आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने सुना है, तो सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

0: कौन लगाए आपने?
1: सिर पर से।
0: सिर कौन से कौन लगा?
1: सिर पर
0: जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं चलाती
0: हूँ। मैं चलाती हूँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण इतने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती। खाने को आते जाते हो, हम अच्छा खाना बनाए बोलते हैं, कभी कम ज्यादा हो जाता है।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ हाँ, खाने को तो अच्छे से अपनी थकान जाती है, सब आपसे बोलते खाने का।
0: हाँ, अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत से फल मिलता है, ऐसा हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ,
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश
1: गाने सुनते हो? फिर रहता रेडियो है, दिन भर
0: रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का एक गीत सुनवाते हैं।

0: जाकर राजबाई भाकर कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: हाँ, बड़ा जिले।
0: जी
1: तो अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोती हैं, धना बोती हैं, चना बोती हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है। जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सच में मुझे परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना।
1: अच्छा लगे, देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। आप रेडियो सुनते हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनते हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे।
0: और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आपकी पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो।
0: बहुत अच्छा गाना आपने सुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए

कौन लड़ गया, अपने बारे में बता।

0: के लोग जो है ना आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सबकी सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने सुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: स्टर्लिंग, अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगा, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया।

0: खुशी खुशी का काम करती है आप, यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं।

0: गाना करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउस वाइफ है, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं, हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हम चाहे सिलाई उलाई भी करते हैं।
0: क्या बात है ना, ऑलराउंडर है ना?
1: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि

0: उसमें आपको खुशी मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं हाँ, अपने हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी खुश रहता है, पूरा परिवार खिला खिलाता रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, विविध भारती सुनते रहिए। और
1: विविध भारती सुनते हैं जी
0: जी और आपने
1: पहले महीना से छटपटा रहे थे ना, ये कम 2 महीना पूरा होगा।
0: अच्छा।

0: बोल रही हूँ।
1: क्या नाम है आपका?
0: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
1: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है। ये बताइए अपने बारे में बताइए।
0: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, आज तालाब है, महाबलेश्वर है।
1: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
0: बहुत ही अच्छा जगह है
1: जी।
0: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
1: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
0: दीदी मैम तो मैं जॉब में हूँ, मैं सारे सेंटर में हूँ, सिटी सर्विस सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज किसी लिए खास आपके लिए फोन करने के लिए।
1: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आप कि फोन लग गया?
0: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं

0: खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते में 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
0: क्या बात,
1: सारी सेंटर में। सिटी सारी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल पे है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
0: जी।
1: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना भी आप में बहुत खुशी देता है, हम खुश हो जाते हैं।
1: हाँ,
0: प्यारे प्यारे गीत
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है, उससे काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
1: जरूरी है, बराबर है
0: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं
1: दीदी? बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूसो किराने।

कोई लग नहीं पाते। आपको बता दें शैक्षणिक के रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाई, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली के प्रस्तुत करता हूँ अनुश्री पाटिल। चलते चलते सखियों से कहेंगे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान।

0: व्यवस्था के केंद्र से बोल रहे हैं असम के एक सौ दशमलव आठ मीटर हॉस्टल। अगले प्रसारण के आयोजन के लिए राष्ट्रीय
1: छठी तारीख की अब पूरी होगी और त्योहार तो बिना मनाए जाएंगे का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। सब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा क्या जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम सब गोल का इलाज करवाएंगे। गजब की बात है,

comme tu dis tout, c'est comme les vous pouvez gigantesque qui entre dans le système de la vie. Nous, comme ça, il y a un peu de temps à la vie des filles et filles. Par les sites, à la vie des dents, et nous, comme ça, j'ai fait. Je vous explique, c'est ce qu'on a dit, et ce châssis est extrêmement dynamique, mais bien aimé, mais bien sûr, qui s'en sort. जबलपुर सिहोरा यूपी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नील काम को मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत है, तो उनकी पोस्टिंग जो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुबुकाहट के साथ दशहरे के दीपोत्सव का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर में हलचल मची हुई थी। खुशी से पद्म महाता कोटीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए

त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां कैसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच राजा को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उप

तुम घर के उलझे समीकरण बड़े में सुलझा सको पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए

तो यार, देखते हैं तो ही रोक दो। अपना अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान्य

ये तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे दीदी।

आप खुद से ही छुपानी

बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, रघुनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगी रहती थी और ये मेरे बाल

coming blood of Jesus. और वजन के हर शेर में

não é a caixa mais importante para o caso de

0: जरूर सुगंधित
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं संसद मार्ग नई दिल्ली 1-1-0-0-0
0: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपसे मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: मैं नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला का चुनाव सभी जिलेवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वह

पर जो सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से SC.census.gov.in पोर्टल पर अपने और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल यात्री में 15 मई 2026 मिलना है तो खुल जाएगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे लोगों को सुनहरे भविष्य और सशक्त योजना निर्माण के लिए हमने

परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा

Nothing. Why did

0: वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इल्यूमिनेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपको पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल यात्रा में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जीवन के सुनहरे भविष्य और सशक्त योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बात। धन्यवाद।
1: जरूरी है, इसीलिए

tengo que estar la mamá, no sé si está la gente.

ये आ गले लग जाते हैं, चाहे लिख

again. Yeah,

also said that

back in the middle.

ya paper ni mami ne mukhe sar ganao ne se ek ho gaya sar ke pati manga sar ne aaj sar medical college mein dushkarm aur hatya mamle mein teen ips adhikariyon ko nirandit kiya मौसम विभाग ने भी झारखंड मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय टीम ने मकाऊ में आयोजित स्थानीय विश्व कप में दो स्वर्ण एक

0: sabita da sesta yogi tsuni.
1: सभी सदस्य और साझेदार भी प्रतिलापन नवाचार

dediğim an ne kadar sen ne zaman

स्टेशन पर ऐसी एक मामले में मुख्य आरोपी सीवीर कुलकर्णी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन की ओर से प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3

सिंह आदित्यनी के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सक महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज

का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।

झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश।

सरकारी बस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन के फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्यवाही का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरटीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में

Gracias.

की आवाज़ें।

he's been off season.

पंडितों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे जैसे सूरज की पहली किरण फूटती, रात में एक शार्प नोट शुरू होता है ललित और मध्यम शार्प लक्ष्मी कि अभी इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता रहेगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल भोज शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं है। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि हमको जो जर्रा भी हमारे

विशिष्ट कथन 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था, जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही थमकने लगी। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीक उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक में उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

90 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

के जरिए मातृदेशी उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसी वक्त की पत्ती है। थानेदार थाने साधन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूड और खूबसूरती के अलावा

ऊंट की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: हर किरदार को यादगार बनाने वाली मासी जोशी 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गई। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को या फिल्म अंजान की सरकारी पुलिस सेवानी चोपड़ा को या फिल्म मृत्यु दंड की केतकी सिंह को जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं।

माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म की हम आपके हैं कौन सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

नमक उथल उथल से गूंजते तीन किरदारों की फिल्म दो फादर है। उस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता

उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही है। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल सिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गदगामिनी का निर्माण किया। इस साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म जस्टा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सारे

देख रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय

सिर्फ अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गई बल्कि रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुकले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आता नकली।

को द्वारा प्रशंसित फिल्म दिल इश्किया, इसमें मात्र ऋषिक के साथ नसीरुद्दीन शाह, अर्शद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आए। 2019 की फिल्म कलंक में मातृ दीक्षित के अभिनय की सराहना।

में गेस्ट के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट में भी गेस्ट रहती है। अपने अभिनय और नृत्य के साथ

श्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजन का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

thanking

start

ही जाएगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम जो राष्ट्रपति की राष्ट्रीय प्रसारण की बात। आप सुन रहे थे कार्यक्रम जो राष्ट्रपति की राष्ट्रीय प्रसारण की बात।